ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ସକାଳ 10:00 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋୟାଲ ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସହିତ। रेनबो एसएमएस कार्यक्रम आरंभ हो जाएगी। आपण माने निज मनपसंद गीत सुनिबापाई मो पाखक मेसेज करि परिवे। मोबाइल मेसेज बॉक्स को जाई टाइप करंतु कैपिटल लेटर रे एफएमआरसी स्पेस दे लिखंतु फिल्म बा एल्बम रना स्पेस दे लिखंतु गीत रना स्पेस दे निज ना ठिकाना लिखि पठाइ दियंतु हम नंबर 09495963210 को।

ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस कार्यक्रम रे सुनु चंदी निज मन पसंद रो गीत आपन को कोयल अछि आपन मान का साथी रे आज रो परवर्ती मैसेज टी को लेखी चंदी किशोर प्रधान खोरदारु गुड मॉर्निंग मैम सुनिबा पई चाहु छी ओडिया चलचित्र धनरे रखिबो शपथ मोररु ना भरोसा को ना बिजुली को ए सुंदर गीत टी को प्ले कर दो छी आपन को पई एन्जॉय करंतु

बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो था मैं दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। श्रोता बंधु ट्यून करी छंदे आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कोयल आपण मान का साथ रे एबे भी अछि। वर्तमान हमर कलाकार कार्यक्रम आउ आजि कलाकार कार्यक्रम रे जहां को गीत एवं जहां को विषय रे कथा मु आपण को पाई आनी छी। मु बाबु जे से एमिति गोटिए ना एमिति जणे ना जहां को कोनोसी इंट्रोडक्शन रा आवश्यकता ही नाही, आ से हेउ छंती साहिर लुधियानवी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोता बन्धु आज आम कलाकार कार्यक्रम कथा होते बॉलीवुड गीतिकार लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी जी विषय कि रचना सुंदर सुंदर गीत आपणी तेरे कोयल आज ये आपठू विदाय नब आम परवर्त कार्यक्रम शुणीपर आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का बहुत ही खूबसूरत गाना टाइटल ट्रैक और अब इसी फिल्म का सीक्वल बनकर आ रहा है, जिससे जी हाँ सुभाष घई भी जुड़े हुए हैं और संजय दत्त भी जुड़े हुए हैं। सुभाष घई इस फिल्म में एक्टिंग करते नजर आएंगे और इसके लीड एक्टर होंगे संजय दत्त। और आज का जो हम सवाल लेकर आए हैं बॉलीवुड सरताज के लिए, तो बॉलीवुड क्विज जो हम लेकर आए हैं उसका क्वेश्चन है कि सुभाष घई और संजय दत्त की 1993 की फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, आपको इस फिल्म का जो सीक्वल है उसका नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। सुभाष घई और संजय दत्त की 1993 की फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, आपको इस फिल्म का जो सीक्वल है उसका नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर।

0: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी रेनबो का हिट प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और हमारे साथ फिल्म जगत की बातों का साथ। बॉलीवुड के मेकर स्टार सलमान खान की बात की जाए तो वो अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं मुंबई में। जी हां, सलमान खान के साथ इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएगी। हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म का टाइटल यानी फिल्म का नाम अभी रिलीज नहीं किया गया है, अनाउंस नहीं किया गया है और अब खबरें ये आ रही हैं कि बहुत ही जल्द मेकर्स इस फिल्म का टाइटल रिवील करने वाले हैं और सलमान खान और नयनतारा की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के लिए खास तरह की तैयारियां की जा रही हैं। कहें तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां जनाब, सलमान खान और नयनतारा की फिल्म को अगर देखा जाए तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वामशी पेडिपल्ली और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू। सलमान खान और नयनतारा की जोड़ी को फैंस पहले ही बहुत ज्यादा पसंद कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बज है इस फिल्म का, लेकिन टाइटल ही रिवील नहीं हुआ है तो सबको ऐसा लग रहा है कि बात की जाए तो

तो कैसे की जाए, क्योंकि फिल्म मेकर्स को, सिने लवर्स को और हमें भी पता है कि एक फिल्म का टाइटल कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम उस फिल्म की बातें कर रहे होते हैं। और अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेगा स्टार सलमान खान और नयनतारा की फिल्म का टाइटल जल्दी ही रिलीज हो जाए।

0: जी हाँ, एक आप हैं और एक हम हैं और एक है हमारा बॉलीवुड सरताज। जी हाँ, हमसे जुड़ चुके हैं वो शख्स जो आज की बनी है बॉलीवुड सरताज। आइए आप उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: जी सर, आप बॉलीवुड सरताज बने हैं, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: तो आज जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष घई साहब और संजय दत्त की 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का सीक्वल बनकर आ रहा है, उसका आंसर बता दीजिए।
1: संजय दत्त है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: उसकी सुभाष। हाँ, फिल्म का नाम जो आपने लिख के भेजा है।
1: खलनायक टू।
0: राइट जी। आप फिल्म देखते हैं?
1: बिल्कुल मैम।
0: किस तरीके की फिल्में पसंद हैं आपको?
1: रोमांटिक मूवीज ज्यादा देखता हूँ मैं, और एक्शन मूवीज, और एक सोशल मीडिया में जो अच्छी मैसेज देते हो उस तरह की मूवीज देखना पसंद करता हूँ, जो सोसाइटी को अच्छी राह पर ले जाए,
0: सीख देती हो।
1: यस
0: जी जी, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बातों से मिलते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल कॉज पे जो फिल्म्स बनती हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब उसमें एक्शन नहीं होता, बहुत ज्यादा गाने नहीं होते, तो उनको कम पसंद करते हैं। बट जैसे आप बता रहे हैं कि आपको वो पसंद है, तो वाकई आप बहुत अच्छी फिल्में देखना पसंद करते होंगे।
1: बिल्कुल मैम, बिकॉज हमारी जनरेशन को अच्छी फिल्में देखने को मिले, तो वो उनका एक आगे फ्यूचर में उनको एक सबक और लेसन भी मिले, और आगे के लिए वो अवेयर रहे कि किस तरह से सोसाइटी में हमें आगे अपने आप को ठीक रखना है, और आगे उसको आगे ले जाना है, अपनी कंट्रीज को, अपनी आपको, मतलब इस तरह से हमें देखना चाहिए कि मूवीज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो एक जो दर्शक होते हैं, जो उनमें हर उम्र तबके के लोग होते हैं
0: जी।
1: तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है मूवी। कोई भी एक मूवी बनने के बाद एक सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के अंदर जब वो आती है तो सबसे पहले उन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरफ तबके के लोग उन्हें देखते हैं, उनका ट्रेलर्स देखते हैं, ट्रेलर्स देखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं,
0: तो
1: इसी तरह से वो चीजें वो फॉलोअप करते हैं, वो ड्रेसिंग सेंस करते हैं, वही चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर फिल्में अच्छी होनी एक सोसाइटी को एक बूस्टअप करती है।
0: जी जी, राजेंद्र जी, आप पहले लिसनर हैं जो इतना डीपली जा रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से फिल्मों को देख रहे हैं। वाकई हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है फिल्मों का, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जो हमारे दर्शक हैं आप जैसे हो और आप की तरह सोच रखते हो। आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप बने हैं आज की बॉलीवुड सरताज।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ जनाब, और अब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनमें बिल्कुल सही जवाब आया है, और उन सभी लिसनर्स के नाम ले लिए जाएं जिन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है प्रवीण चौहान, खरगोन मध्य प्रदेश से, राजेंद्र कुमार दिल्ली से, वो हमारे आज के बॉलीवुड सरताज बने, और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर। इसी के साथ राजेश कुमार दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सृष्टि कुमारी पटना बिहार से बिल्कुल सही जवाब। सृष्टि, हमने आपको भी कॉल लगाने की कोशिश की थी लेकिन कॉल लगा नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का बात होगी, आप भी बनेंगे किसी ना किसी दिन बॉलीवुड सरताज। यूं ही प्रोग्राम्स को सुनते रहिए, एफएम रेनबो के प्रोग्राम्स को आप यूं ही हमेशा सुनते रहिए। नौशाद चौधरी दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसी के साथ जयराम खोरवाल दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।

ईशा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद फुरकान कान से सही जवाब, दानिश खतौली से, दिनेश गायकवाड़ यवतमाल महाराष्ट्र से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद फुरकान सियाल गांव मेरठ से सही जवाब दे रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, विजय कुमार कामन दिल्ली से, सलीम मलिक मेरठ से, उमेश कुमार ख्याला से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: संतालों को ठारू बंडा एवं कोयंग को जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में

0: सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना हम कदम। और कहां पर सुन रहे हैं आप इसे? 102.6 पर तो सुन ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और अगर आप OTT के दीवाने हैं तो आपको OTT का तड़का मिलेगा कहां पर? वेव्स प्लेटफॉर्म है हमारा, उस पर। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पर। आज हम बात कर रहे हैं कि मस्ट हैव क्वालिटीज इन लाइफ पार्टनर या हम कदम जिन्हें आप कहते हैं वो क्या होनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, या इसमें हमें कहां बाउंड्री सेट करनी है, या हमें ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये टोटली आपका डिसीजन है, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूं, मुझे बख्श दीजिए, ठीक है? तो पेशेंस, टॉलरेंस या ये इस तरह की चीजें उनमें होनी चाहिए। पेशेंस तो बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मैच होती है ना, जहां पर वहां कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। और एक सारी बातें एक साथ मिल जाएं जरूरी नहीं, लेकिन आप उस उतार चढ़ाव को किस तरह से मेंटेन करते हैं ये मैटर करता है। तो ऐसे में ना आप सिर्फ बातों पर ध्यान मत दीजिए, वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, आप एक्शंस पर ध्यान दीजिए। देखें कि वो जो कहते हैं या कहती हैं उसे पूरा करती हैं या नहीं करती हैं, या फिर सिर्फ बहुत लंबे समय से कहती ही जा रही हैं और बदलाव कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो ध्यान देने वाली बात है। पेशेंट से मुझे याद आया कि एक पेशेंट पहुंचा डॉक्टर साहब के पास और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर बोले कि अरे भाई, जोड़े तो भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? बताइए, अब ऐसी जगह पे पेशेंस काम आता है कि नहीं है? क्या अगर पेशेंस ना रखें आप, तो फिर तो वही होना है कि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो उस जगह ना डॉक्टर को खुद मरीज बनने में टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रही हूं आपको। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर पटाखे फूटते हैं। तो और पटाखे नहीं फोड़ने हैं, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। और आप अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, न सिर्फ दूसरे के बल्कि अपने भी, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मैच करने चाहिए आपके एक्शंस आपके वर्ड्स के साथ में, ठीक है? अब एक गाना सुनेंगे, उसके बाद आएंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। और अब आएगी बात रेड फ्लैग्स की, कि क्या क्या वो खतरे के लाल निशान है, खतरे के निशान है जिन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रख के ना आप खुद को भी बचा सकते हैं और लोगों को भी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: मेघा जी एक बार फिर स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यू आर विथ मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना कपल बेस्ड शो हम कदम। हम बात कर रहे हैं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हम सफर या हम कदम में जो आपको आगे बढ़ने में आपको प्रेरित करे और आपका साथ दे, और क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनके हमने अभी तक बात नहीं करी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं बात उसके बारे में, देर किस बात की। तो सबसे पहला तो ये है कि कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि हर बार आपको कुछ गलत करते रहें और फिर बार बार मैनिपुलेट करते रहें और उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। और साथ में ये भी कहें कि आई एम ऑन माई वे टू बिकम अ रेड फ्लैग एज बींग ग्रीन वन डिड नथिंग फॉर मी। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सच बता रही हूं मैं। गलत करना और फिर उसको सही ठहराना, ये किस तरह से सही है भाई? आप कुछ भी बनने की कोशिश कर रहे हो, उससे हमें क्या, उससे नुकसान हो रहा है हमारा, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी बात, लैक ऑफ ट्रस्ट या ऑनेस्टी। थोड़ा बहुत कभी कभार जांच पड़ताल करना ठीक है, लेकिन बार बार ये कि दिखाओ जरा अपना फोन या फिर आपसे कहें कि प्रूफ मांगते रहें हर समय या मांगती रहें, तो ये भी गलत है। ये आपकी प्रिवेसी में दखल अंदाजी है बहुत बुरी तरह से और ये गलत है। अगर किसी को आप पर भरोसा नहीं है तो अगर एक बार नहीं है तो बार बार फिर होगा नहीं। आप एक बार उनको ट्रस्ट फील करवाने के लिए आप उनको प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन फिर ये आदत ना बन जाए इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप सही हैं तो आपको बार बार प्रूफ देने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर कोई आप पर ट्रस्ट करता है, आपको अच्छे से जानता है, तो आपसे प्रूफ मांगेगा भी नहीं। दूसरी बात कि और जो इमोशनल अब्यूज या किसी भी टाइप का अदर अब्यूज जो करते हैं वो तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। तो इससे बिल्कुल बच के रहें और इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें किसी भी तरह से। अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे तभी वो रिलेशन आगे बढ़ पाएगा, और अगर आप अपनी हेल्थ से ही जाएंगे तो फिर रिलेशन तो बचेगा ही नहीं ना, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना या अपोलोजाइज ना करना। गलतियां हम सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, वो बात सही है, लेकिन गलतियां करके उनको सुधारने की कोशिश करना ही एक सही इंसान का काम है, बजाय इसके कि वो गलतियां करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, या वो कहें कि मैं उसके जैसी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं, तो मैं ऐसा लगता है तुम्हारी मेंटालिटी में कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर महिलाओं की है या पुरुषों की, दोनों के लिए लेते हैं, तो आप ना सामने वाले को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें। आपको क्या लगता है, आप पहले इंसान हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर तरह के इंसान है, आप ये कोशिश कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज करने की जब आप कोशिश करते हैं, वो चेंज तभी हो सकता है जब वो इंसान खुद बदलना चाहे। अगर वो खुद ही नहीं बदलना चाहता है तो आपका कोई भी एफर्ट काम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आखिर में कहना चाहूंगी वो ये कि एक बेहतर हम सफर हम कदम की पहचान यही है कि आपको साथ रहते हुए उसके कैसा महसूस होता है। आप उसकी कंपनी में अपना एक बेटर वर्जन बन गए हैं, या आप पहले से और ऊंचे उठ गए हैं, या आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, या फिर आप पहले से भी बदतर हो गए हैं। मतलब पहले आप अच्छे हुआ करते थे और आप एकदम आप डम होते जा रहे हैं, या आपने कुछ नया नहीं सीखा है लाइफ में, या आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, यही बात बता देती है कि आपका रिलेशन कैसा है और आपको इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। इतनी सारी ज्ञान की बातों के बाद ना अब विदा लेने का वक्त आ गया, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलेंगे फिर बहुत जल्द। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे थे आशियाना विद मी शालिनी 102.6 पर। चलते चलते ये सॉन्ग आपके लिए प्ले करती हूँ, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आ गई है आपके दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज एक नया दिन और एक नया विषय और एक नया गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में, पर ये गेस्ट कोई आम नहीं है, बहुत खास है। आपका परिचय अभी थोड़ी देर में आपसे कराते हैं, पर एक बात जो आपको कहनी है वो ये है कि स्वास्थ्य ही धन है। ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन आज के दौर में ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक वैश्विक सत्य बन चुकी है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग बेहतर और सुलभ इलाज की तलाश में सीमाओं को पार करते हैं, तब एक नई अवधारणा जन्म लेती है, मेडिकल टूरिज्म। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जहां लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर निकलते हैं, जहां अस्पताल केवल इलाज का केंद्र नहीं बल्कि भरोसे, तकनीक और करुणा का संगम बन जाते हैं, और भारत अपनी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, अनुभवी डॉक्टरों और किफायती इलाज के कारण इस वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। यहां परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मेल देखने को मिलता है। जहां एक ओर अत्याधुनिक सर्जरी होती है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्राचीन पद्धतियां भी लोगों को आकर्षित करती है। आज का ये कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय यानी मेडिकल टूरिज्म पर केंद्रित है। हम जानेंगे कि कैसे क्षेत्र न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक पहचान को भी सशक्त बना रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष अंक का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और अब समय आ गया है परिचय कराने का आपसे, आपके एक बेहद लोकप्रिय एक

0: पर्सनालिटी से जो कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत नामी नाम है, नामी गिरामी हस्ती है, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है और कुछ कुछ तो लोग पहचान भी गए होंगे क्योंकि हम तारुफ करा रहे हैं आपका हमारे आज की एक्सपर्ट से जो है डॉक्टर उपासना अरोड़ा। आप ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो मैम ने समय निकाला है आज एक घंटे, मैम रेडियो डॉक्टर में आपकी गाइड बनेंगी। हम सबको जरूरत है इसको जानने की कि मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा शब्द बनकर उभरा है जो पहले सुनने में नहीं आता था, तो थोड़ा सा मैडम के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। आप जो है मेडिकल टूरिज्म कमिटी की को हेड कर रही हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में, मैम चेयरपर्सन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत में, आप चेयरपर्सन है फिक्की मेडिकल टूरिज्म कमिटी में और साथ ही साथ आप चेयरपर्सन है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है मैडम की जिसमें उनके कितनी जगहों से आप जुड़ी हैं और जगह से आप ये कार्य कर रही हैं, नोबल कॉज से आप जुड़ी हुई हैं और रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मैडम को बहुत मिल चुके हैं, तो आज एक इंस्पिरेशन बन चुकी है वो पूरी युवा पीढ़ी के लिए। तो आज हम मैम का स्वागत करते हैं और बहुत कुछ जानेंगे इस डायरेक्शन में भी क्योंकि एक जो नया क्षेत्र खुल रहा है मेडिकल की दृष्टि से और भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, इसको कैसे डिफाइन करते हैं?
1: जब बाहर के देशों से लोग हिंदुस्तान आते हैं, हमारे भारतवर्ष में आते हैं, उसको हमने नाम दिया है चिकित्सा के लिए।
0: जी जी।
1: देखिए ऐसा सालों से होता था कि हम लोग यानी भारतीय जाया करते थे एक समय में अमेरिका या लंदन, क्योंकि तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब भारत चिकित्सा के क्षेत्र में इतना अग्रणी है और हमारे डॉक्टर्स इतने ही एक्सपर्ट हैं जो बाकी देशों में भी सुविधाएं देते हैं। तो जब बाहर के दूसरे देशों के लोग आते हैं तो आप ये समझिए कि उस सफर को हमने नाम दिया है मेडिकल टूरिज्म, यानी ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए पहुंच रहे हैं।
0: जी, तो ये मेडिकल टूरिज्म कब से शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते और अभी भी जब कोई डिफिकल्ट सर्जरी की बात होती है क्या मेजर कोई ऐसा क्रॉनिक एलिमेंट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसके लिए तो विदेश जाना पड़ेगा।
1: देखिए होता तो ये बहुत सालों से रहा, कुछ कंट्रीज से लोग आ रहे थे, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, जैसे एक समय था हमारे देश में अफगानिस्तान से बहुत लोग आया करते थे।
0: जी,
1: लेकिन अभी तक ये सेक्टर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और कुछ अस्पताल थे जो अपने अस्पताल में बाहर के जाकर पेशेंट लेकर आते थे और ये सुविधाएं देते थे। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन उभर के सामने आया और उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को हमें बहुत ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई विदेशी भारत में आके चिकित्सा सुविधा लेता है और अगर वो किसी गलत हाथों में चला जाता है, किसी गलत अस्पताल पहुंच जाता है या उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का या एक जगह का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का अपमान है। तो उनके दिमाग में ये एक बहुत ही अच्छा विचार था कि हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बिल्कुल रोडमैप बनाकर दी, जिसमें ये काम कई सालों से चल रहा था, लेकिन अभी जब हमारा बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण जी ने तो उन्होंने उन्होंने कहा हिंदुस्तान में 5 मेडिकल हब बनाए जाने चाहिए।
0: ओके।
1: उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार रखी जिसमें सौभाग्यशाली हूं कि मैं भी थी, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे आपको मेडिकल हब बनाना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, वहां पे चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हों, साथ ही साथ वहां पे जो पेशेंट के साथ के लोग हैं उनको रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए, कुछ ऐसा हो जहां पे वो जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो कुछ देख भी सके, भारत दर्शन भी कर सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं DPIT के साथ हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सभी काउंसिल्स हैं, मैं चूंकि सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में हूं जिसका काम है विदेशी लोगों को भारत में फॉरेन एक्सचेंज को कमाना, तो इस तरह का काम हम करते हैं। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में जो सबसे जरूरी बात है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जुड़ने का कारण क्या था, NABH के जुड़ने का कारण क्या था, कि क्वालिटी

0: केयर मिले। हर अस्पताल उसमें इनरोल नहीं हो सकता जो एनएबीएच एक्रेडिटेड अस्पताल हो, यानी कि वो कुछ मानक को पालन कर रहे हैं वो वहां होंगे। तो जो भी भारत में आने वाला विदेशी नागरिक है उसको क्वालिटी केयर मिलेगी, साथ ही साथ कुछ उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे हमें उस भाषा का ज्ञान रखने वाले इंटरप्रेटर भी देने पड़ते हैं ताकि हम अपने पेशेंट की बात को समझ सकें। साथ ही हम लोगों ने ऐसी सुविधाएं रखी हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट तो अगर लंबा, क्योंकि आपको बताना ये भी जरूरी है, भारत में जो पेशेंट बाहर से आता है वो किसी बड़ी सर्जरी के लिए आता है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, या पूरी कोई आर्थोपेडिक में री ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या कैंसर सर्जरी या इस तरह की चीजें
1: जी।
0: तो वो लंबा रुकते हैं, तो उनके साथ जो उनके अटेंडेंट होते हैं उन बेचारों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ अस्पताल में ही बैठे रहें, तो एक तो उनके रहने की सुविधाएं हम लोग रखते हैं, साथ ही साथ उनको आसपास का क्षेत्र भी दिखाते हैं, उनके हिसाब का खाना बनता है। तो ये सारी चीजें, यानी हम लोग ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आप घर से दूर भी हैं तो आपको घर की कमी ना महसूस।
1: जी जी, मतलब वो उनका जो स्टे है वो मेमोरेबल उस सेंस में भी रहे कि वहां जाकर सिर्फ एक सर्जरी ही नहीं, वो एक अच्छी यादें भी लेकर वापस जाएं। ये अच्छी बात है, और आप लोग भी बहुत कुछ जानना चाह रहे होंगे इस कार्यक्रम के साथ जो जुड़ गए हैं। हमारे श्रोता प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, तो आप अपने प्रश्न यहां करते हैं, आज भी कर सकते हैं, मैम रहेंगे हमारे साथ और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं 2342-1080, 2342-1082। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 डायल करके इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर उपासना अरोड़ा से बात कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। हम आपकी जर्नी के बारे में भी अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपकी पसंद का गीत मैंने निकाला है, आइए सुन लेते हैं अपने श्रोताओं के साथ। सुनते रहिए।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में. आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म पर और हमारी आज की एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा और हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. आइए इनसे पहले बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो
0: जी नमस्कार.
1: रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर शाली मैम को शालीनता सही नमस्कार.
0: नमस्कार राजेंद्र जी.
1: और जो टॉपिक एक्सपर्ट मैम है उनको भी नमस्कार और आभार.
2: नमस्ते जी.
0: क्या पूछना है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ. और मैम से मेरी दो गुजारिश है, छोटे छोटे सवाल है. पहला सवाल मेरा ये है कि यूप टूरिज्म तो जो है मोदी साहब ने नाम दिया है दिव्यांग विकलांगों को, तो मेरा सवाल यह है कि दिव्यांगों के लिए इसमें क्या इसको बनता है. पहला सवाल ये खासतौर से जो आंखों से महरूम है उनके लिए. और दूसरा सवाल वो ये है कि इसमें दिव्यांग लोग क्या अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जरा गाइड करें बड़ी मेहरबानी होगी.
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. मैंने बताया भी कि मैम जो है जुड़ी हुई हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत से भी, तो आप बहुत ऐसे कार्य भी देख रही हैं. इनका ये प्रश्न है.
2: देखिए मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार के जो दिव्यांग जन है, चाहे वो मेंटली चैलेंज हो, चाहे वो आंखों से महरूम है, या जिनको हाथ पैर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन सबके लिए विशेष सुविधाएं अब बना दी हैं. साथ ही साथ उनको बहुत अच्छा, अगर वो किसी खेल में चले जाते हैं तो इनाम राशि बहुत ही अच्छी कर दी है. और जहां तक आपका ये प्रश्न था कि उनके लिए कैसे उनको कार्य पे लगाया जाए, तो आपको जान के खुशी होगी कि ब्लाइंड्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत तरह की जॉब्स होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्लाइंड ही होते हैं, बाकी उनके सारे अंग ठीक काम कर रहे होते हैं. उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी मैं आपको बताती हूँ. मैं एक कार्यक्रम में थी स्पेशल ओलंपिक भारत में. स्पेशल ओलंपिक में मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं. वहां पे जो हमारी चीफ गेस्ट थी वो थी दिल्ली के ही एक क्षेत्र की जिलाधिकारी, जो कि आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस पास किया और आज वो जिलाधिकारी हैं. तो ये एक उदाहरण है जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आंखों से नहीं भी देख सकता है तो वो और किसी भी कला में पारंगत हो सकता है और उनके लिए हर जगह नौकरी उपलब्ध है. मुझे लगता है शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई राजेंद्र जी.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. और बहुत सारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं वो हमारे रेडियो डॉक्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं. और मैं जैसा पहले ओपनिंग में बोल चुकी हूँ कि मैम इज एन इंस्पिरेशन, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे मैम अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी बताएं, किस तरह से आप जो इस मुकाम को आपने आज अचीव किया है वो कितना ईजी रहा या टफ रहा, वो थोड़ा सा बताइए.
2: अगर आप मेरी पूरी जर्नी जानेंगी तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो हम बहुत अच्छे घर में पैदा हुए थे, जिसे आप लोग एक आम भाषा में कहते हैं धनवान घर में मेरा जन्म हुआ था. लेकिन फिर मेरे पिताजी बीमार हो गए तो हमारे घर से वो सारा ऐश्वर्य और वैभव समाप्त होकर गया. तो आपने आज तक जो भी इंटरव्यू किए होंगे लोगों ने बताया होगा कि हम पहले गरीब थे, फिर हमने कैसे मेहनत करी और हम अमीर हुए. लेकिन मेरी जर्नी में पहले हम अमीर थे फिर हम गरीब हो गए. तो मैंने अपनी माँ का संघर्ष देखा, उसके बाद मैंने अपने मन में ये ठाना कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ समाज में बदलाव लाऊंगी, और इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आईएएस अधिकारी बन सकूं. लेकिन जब तक मैं इम्तिहान देती मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया और तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं 22 साल की थी. तो जिंदगी बहुत बड़े और एक अनोखे मोड़ पे खड़ी थी. उस समय फिर मैं अपने मामा जी के साथ चली गई थी और उसके बाद मेरी शादी हुई जो यशोदा अस्पताल में श्री पी एन अरोड़ा जी से. उसके बाद यशोदा मेरी स्वर्गवासी सासू माँ का नाम है जो कि कैंसर पेशेंट थी.
0: अच्छा.
2: उनकी याद में इस अस्पताल को बनाया गया, क्योंकि जिस समय हमने अस्पताल बनाया था गाजियाबाद में हमारे परिवार ने, उस समय गाजियाबाद में कुछ भी नहीं था और मेरे पति को अपनी माताजी को लेकर बम्बई जाना पड़ता था कैंसर के लिए. टाटा ही हुआ करता था.

0: तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर. तो वो उनकी याद में और वो जो मेरे पति का अपनी माता जी के साथ, जैसे कहते हैं ना हर क्षण कुछ डिसाइड करता है.
1: बिल्कुल.
0: वो ट्रेन से जा रहे थे, लोकल ट्रेन से, पानी भरने के लिए. तब ये बिस्लरी नहीं होती थी, वो नीचे उतरे थर्मस में पानी भरने. ट्रेन चल दी और मम्मी चली गई आगे.
1: अच्छा.
0: तो मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए कि मम्मी खो ना जाए, बीमार भी हैं. लेकिन लकली वो नेक्स्ट स्टेशन पे मिली. लेकिन वो एक क्षण था जब मेरे पति ने डिसाइड किया कि मैं जो भुगत रहा हूं इस दर्द को, ये गाजियाबाद में और लोग ना भुगतें.
1: अच्छा.
0: तो ये सोचकर हमारे परिवार में, हमारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ दोनों डॉक्टर थे, मेरे फादर इन लॉ, इन चारों ने मिलकर अस्पताल बनाया उनकी याद में, यशोदा जी की याद में. और माता जी इतनी अच्छी थी कि आप देख रहे हैं उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवा करी है. और धीरे धीरे बढ़ते गए, 6 अस्पताल बन गए. तो अब हमने कैंसर पे फोकस किया इस समय और एक नया अस्पताल बनाया जिसका नाम है मेडिसिटी, जिसमें सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ है. आपको कहीं किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो ये है मेरा छोटा सा सफर.
1: ये सफर बहुत एक्साइटिंग भी है और बहुत इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि इतने सारे अप डाउन्स के बाद और उस मुकाम पे पहुंच जाना. और जब आपने शुरुआत की होगी तो ये सोचा भी नहीं होगा. आपने बताया घर में डॉक्टर्स थे, उन्होंने शुरुआत की, पर आप कैसे आई वो एक अलग कहानी होगी. और मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड निकल जाएगा और हम शायद उससे सीखते ही रहेंगे आपकी कहानी से, पर धीरे धीरे करके पूछते रहेंगे. मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरे पास झड़ी लग चुकी है मैसेजेस की और बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं. तो मैं शुरुआत करती हूँ. गुड आफ्टरनून मैडम, वेलकम टू डॉक्टर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम. आप यहाँ आज आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. मोहम्मद इब्राहिम हमें मैसेज करके लिख रहे हैं और भी बहुत सारे मैसेजेस आपको वेलकम करते हुए आए हैं. ये मैसेज हमें लिखा है परिधि ने दिल्ली से. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. थैंक्स शालिनी जी फॉर सच थॉटफुल क्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल्सो थैंक्स टू उपासना जी फॉर शेयरिंग ग्रेट इन्फॉर्मेशन. इनका एक क्वेश्चन है मैम कि फ्यू ट्रीटमेंट कैन समटाइम टेक ईयर्स. जैसा आप बता भी रही थी शुरू में कार्यक्रम के पहले जब हम बातचीत कर रहे थे कि कभी कभी महीनों के लिए लोग आते हैं, तो डू कंट्रीज ऑफर लॉन्ग टर्म मेडिकल वीजास फॉर सच ट्रीटमेंट?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि ये डिपेंड, वीजा डिपेंड ही करता है कि किस प्रकार का आप इलाज कराने भारत में आ रहे हैं. ये हमारे मिशंस वहां पे जो वीजा दे रहे होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं.
1: अच्छा.
0: और इनको फिर मल्टीपल एंट्री का वीजा मिलता है. तो जैसे एक बहुत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आता है, मान लीजिए लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, 2-3 महीने के बाद अगर वो वापस भी जाना चाहता है तो वो जा सके, फिर वापस आ सके, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को फॉलोअप्स की बहुत जरूरत होती है. तो उनको बार बार वीजा के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए मल्टीपल एंट्री वीजा भी हम लोग देते हैं. और मुझे ऐसा लगता है ये एक नियम है जो सारी दुनिया को पता है कि अगर कोई बीमार है और वो आ रहा है तो लंबे समय के लिए ही आएगा, तो इनको लॉन्ग स्टेइंग वीजा ही मिलता है.
1: जी. और ये क्या प्रोसीजर, कितना टफ है ई जो मेडिकल वीजा का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना अवेलेबिलिटी है या क्या प्रोसेस है वो?
0: देखिए, एक समय था जब ये सब कुछ बहुत टफ था. अगर सच कहा जाए, एक समय था जब वीजा मिलना ही बड़ा मुश्किल था. लेकिन जब कहते हैं ना, सरकार अगर कुछ करना चाहती है, ठान लेती है, तो कर दिखाती है. जब से सरकार ने ये चाहा कि नहीं हमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो पिछले 2-4 सालों में चीजें इतनी बदल गई हैं कि मैं चूंकि शुरू से ही इस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से जुड़ी हुई रही, अलग अलग जगहों से, कभी फिक्की से, कभी सीआईआई से, कभी बीआईएस से, तो बहुत सारी चीजों की वजह से मुझे पता है कि कितना चेंज आया है.
1: जी.
0: वीजा बहुत इजी हो गया है, ई वीजा भी मिलता है. और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक प्रयास किया है जो हम लोग मिनिस्ट्रीज में उठाते हैं क्वेश्चन, कि जो सीरियस पेशेंट है उसकी कंडीशन देख के वीजा की अवधि को तय किया जाए. जैसे मान लीजिए अगर कोई सीरियस, बहुत ही सीरियस पेशेंट है, तो उसका वीजा तुरंत होता है.
1: अच्छा.
0: उसको टाइम नहीं लगाते. या कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कुछ देश हैं जो अभी बैन है, नहीं आ रहे हैं, उनमें भी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें भी उनको वीजा मिलता है. लेकिन केस जेन्युइन होना चाहिए.
1: जी. तो उसके थोड़ी सी छानबीन की जाती है.
0: हाँ जी. जी. तो जी. मुझे ऐसा लगता है अब चीजें बहुत आसान है.
1: जी, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं. और देखिए, ये हमें कुंडली विलेज से नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से मैसेज आया है. हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा, शेफाली और माधव दास इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं. और ये हमें लिखकर भेजा है शालिनी जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कालरा, गुड़गांव में रहता हूँ. डॉक्टर अरोड़ा को मेरा नमस्कार.

0: A very nice program. Thank you so much. Randhir Gupta, Babita Rani Gupta, Okhla Sangam Vihar Delhi se is karyakram ki tareef kar rahi hain aur aapka swagat kar rahi hain. Aur ye hume message kiya hai Manohar ji ne Munsiyari se. Namaskar Shalini ji aur Upasana ji, main Uttarakhand ke sudur seemavarti kshetr Munsiyari mein app ke madhyam se sun raha hu us karyakram ko. Is samay yahan ka tapman 1 degree hai. Meri do jigyasa hai. Bharat sarkar ki Heal India pehal ke tahat medical tourism ko badhava dene ke liye kis tarah apni भूमिका निभा रही है हमारी सरकार, और दूसरा प्रश्न है कि मेडिकल टूरिज्म में युवा किस तरह से हेल्थ केयर में अपना योगदान दे सकते हैं, खासतौर पर रोजगार के अवसर और भारत सरकार की अंतिम जन के लिए दी जा रही सुविधा, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, सबसे जो आपका पहला प्रश्न था वो था कि किस तरीके से सरकार
0: हील इन इंडिया
1: में काम कर रही है। तो सरकार के दो नारे हैं, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया में हम लोग अपने प्रशिक्षित डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स वगैरह को बाहर भेजते हैं, और हील इन इंडिया में हम पेशेंट को बुलाते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों में हमें एक तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो अस्पताल इस सुविधा को दे रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस अस्पताल हो, वहां पे स्किल्ड स्टाफ और डॉक्टर्स हो। तो ये सबसे बड़ा जो सरकार काम कर रही है वो यही कर रही है कि वो सही लोगों से पेशेंट्स को मिलवा रही है, पहला। दूसरा, अभी एक और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं,
0: अच्छा,
1: जो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लॉन्च करेगा, जिसमें हम एनएबीएच के साथ टाई अप करेंगे ताकि सिर्फ वही अस्पताल उसमें आएंगे जो एक्रेडिटेड अस्पताल हैं। और अब एक नई डिस्कशन हुआ है मिनिस्ट्री में, जिसमें यह कहा गया है कि हमें बहुत हाई एंड सुविधा के लिए एक रेटिंग और देगा एनएबीएच, अच्छा, अस्पतालों को, जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और डॉक्टर्स की डिग्री से रिलेटेड होगा, ताकि जिसके द्वारा इलाज किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशिक्षित लोग हों। और साथ ही साथ हम लोग आउटकम भी पोस्ट करेंगे उस पोर्टल पे।
0: अच्छा,
1: सो जो आ रहा है वो खुद ही चूज कर ले कि भाई ये डॉक्टर इसकी, हम लोग सारा यहां तक कि उस ट्रीटमेंट को भी डालेंगे कि आपका इलाज इतने रुपयों में हो सकता है, ताकि हर आदमी अपनी पॉकेट के हिसाब से अस्पताल को चुने, आउटकम के हिसाब से डॉक्टर को देखे और इंडिया आए। तो पहला तो मैं सरकार का धन्यवाद करते हुए बताती हूँ, एक तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न मैं इनका पूछूं,
0: दूसरा ये युवाओं को चाह रहे हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं इस के साथ।
1: देखिए, युवाओं के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि सारा काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, तो हमारे लिए जरूरी है कि कुछ लोग आगे बढ़कर आए। जो युवा हैं उन्होंने ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हैं, जो और देशों में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के अस्पतालों के साथ टाई अप करते हैं, फिर वो भारत लाते हैं उन पेशेंट्स को और यहां के अस्पतालों के साथ टाई अप करते हैं। तो इस तरीके से साथ ही साथ हम इन युवाओं को स्किल्ड मैन पावर के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं, यानी कि वो एक पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, या अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोल निभाए जा सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, वो विभिन्न भाषाएं सीख के,
0: बहुत जरूरी है।
1: तो इस तरीके के काम हैं जो युवा बहुत आसानी से कर सकते हैं और जो उनके रोजगार में भी सहायक होगा और जो उनकी नॉलेज भी एनहेंस करेगा।
0: जी,
1: तो ये दो प्रश्न
0: जी। एक मेरे दिमाग में जब मैं ये कार्यक्रम सोच रही थी करने की, मैंने सोचा था आप आएंगी तो जरूर पूछूंगी, उसका जवाब आपने दे दिया कि कैसे कोई इलाज कराना चाहे तो वो सुदूर देश में बैठ के ये सोच सकता है कि मैं सही जगह जा रहा हूं कि नहीं, वो एनएबीएच एक्रेडिट है कि नहीं, कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें उसको जानना, उसको कलेक्ट करना और प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा। तो आप ये बता रही हैं कि उसके लिए एक पोर्टल किया जा रहा है, तो अभी वो सारी इंफॉर्मेशन वहां फर्स्ट हैंड मिल जाएगी।
1: बिल्कुल, और ये पोर्टल हम लोग, हमारे जो मिशन्स हैं, हर कंट्री में इंडिया मिशन होता है, हमारी एम्बेसीज होती हैं, उनमें भी ये पोर्टल अवेलेबल रहेगा, ताकि जब लोग वीजा के लिए आते हैं तो उनको उस पोर्टल के बारे में बताया जाए कि भाई ये लिंक है, आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के इसमें अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको पैसों से लेके आपके पेशेंट के लिए जिस डॉक्टर ने ये सर्जरी करी है उसका आउटकम क्या है वो भी होना चाहिए, ताकि
0: कुछ रिव्यूज भी जैसे आजकल लोग पढ़ना चाहते हैं।
1: जी, वो सब कुछ अवेलेबल होगा।
0: कब तक लॉन्च होगा मैम?
1: हमने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया, डेटा हमारे पास पूरा ऑलरेडी है, हमें सिर्फ अब एक सही हम कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसपे ऑलरेडी हम लोग टेंडर कर चुके हैं, मुझे लगता है दो महीनों के अंदर ये पोर्टल पूरा लॉन्च हो जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वन क्लिक पे अवेलेबल होगी सारे देशों में.
0: तो हमारी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द ये शुरू हो. और मैं श्रोताओं को बता दूं कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं डॉक्टर उपासना, शी इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो. आपकी आवाज हमारे श्रोता सुन ही रहे हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि इतनी मधुर

0: आपकी आवाज है और आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, ऐसा मुझे पता चला है, तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए।
1: जी, मैं अपने अस्पताल में अपने डॉक्टर्स के लिए हमेशा गाती हूँ
0: जी,
1: तो वो मैं आज आपके सामने करती हूँ।
0: प्लीज

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं एफएम रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। और आज एक खास टॉपिक एक खास एक्सपर्ट के साथ हम कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म। और बहुत सारी बातें अभी हमें डॉक्टर उपासना अरोड़ा से जानना बाकी है और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मैडम है फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
2: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी
2: अच्छा मैडम जी, जैसे कि अपने देश के लोग हैं, मैं मान लो हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, बीपीएल कार्ड भी है और दिमाग की दवाइयां भी खाते हैं लगातार और कई और भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे लीवर वगैरह की
1: जी।
2: तो हमारे लिए क्या प्रावधान है मैडम इस योजना में और इसकी जो है ना वो डिटेल वगैरह कहाँ चेक कर सकते हैं?
3: ये देखिए, जो आज का कार्यक्रम है ये तो उनके लिए है जो बाहर से आते हैं, लेकिन आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी ऐसे अस्पताल में जा सकते हैं जिसने खुद को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा हुआ है। सारे प्राइवेट अस्पताल नहीं जुड़ते, कुछ लोगों ने लिया हुआ है। साथ ही साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे और अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे तो वो आपको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट देंगे और आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट पूरी तरह से मुफ्त है किसी भी पेशेंट के लिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड है। और हर वो अस्पताल जो आयुष्मान से जुड़ा हुआ है वो आपको 5 लाख तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त देता है।
1: धन्यवाद संजीव जी, आप निरंतर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। आप मैम यशोदा हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी 2006 में, लगभग 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं और बहुत सारे आपने चेंजेस भी देखे, लेकिन एक बात जो सीधे आप से जुड़ती है और बहुत लोगों से मैं सुन चुकी हूँ कि आप जब से हेल्थ सेक्टर में आई हैं तो एक पेशेंट सेंट्रिक जिस तरह से स्वास्थ्य होना चाहिए, एक क्वालिटी एश्योरेंस और एक वैल्यू बेस्ड केयर, इस पर आपने बहुत जोर दिया है और इस पर आप काफी ज्यादा वर्क भी करती हैं। तो ये जो आपके आइडल्स हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
3: पहले तो मैं बता दूं, मैं 26 सालों से काम कर रही हूँ।
1: ओके।
3: और पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी मेरी जिंदगी में आया 2008 में।
1: ओके।
3: उसके बाद से मैं कहूंगी मेरा पूरा जीवन बदल गया। जहां हम लोग उससे पहले क्या था, जब तक एनएबीएच नहीं कर रहे थे, क्वालिटी में नहीं गए थे लोग, 2006 में एनएबीएच आया था भारतवर्ष में। उसके बाद 2008 में मैंने प्री असेसमेंट के लिए अपने अस्पताल के लिए अप्लाई किया, तो जो उसकी गाइडलाइन थी जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे को एक बात समझ में आई जो मैं अभी भी अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, सिर्फ एक काम करने की जरूरत होती है एक अस्पताल में, अपने पेशेंट को सेफ रखो, सही ट्रीटमेंट करो और उसको खुशी खुशी घर भेजो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, जो हमारा पेशेंट सेफ्टी गोल हम लोग मान के चलते हैं कि पुटिंग पेशेंट फर्स्ट। अगर हमारे लिए एक अस्पताल में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैं मानती हूँ वो है एक पेशेंट, अगर वो पेशेंट ही नहीं होगा तो बाकी सारा जो भी चाहे डॉक्टर है चाहे नर्स है, वार्ड बॉय है या अस्पताल का मालिक है, वो क्या करेगा। तो पेशेंट अगर आया है तो पूरा कंसंट्रेशन रखो। साथ ही साथ हमें एनएबीएच ने सिखाया कि कैसे आप सही ट्रीटमेंट दें, कैसे हम अपनी एरर्स को कम कर सकते हैं। ओटी में जैसे चेकलिस्ट हम लोग चलाते हैं जिसकी वजह से कभी भी रॉन्ग साइड सर्जरी नहीं होती, कभी भी कोई रॉन्ग मेडिसिन नहीं जाती। तो ये सारी चीजें जो पेशेंट से रिलेटेड हैं ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि 2008 में हमने प्री असेसमेंट के लिए अप्लाई किया। फिर उस समय पहले प्री असेसमेंट होता था फिर असेसमेंट होता था, बीच का गैप मिलता था आपको अपनी कमियां दूर करने का। 2010 में हमको एक्रेडिटेशन मिला जो कि हमारे एरिया का पहला अस्पताल था, उसने और मोटिवेट किया। फिर मैंने कोर्स किया एनएबीएच का और धीरे धीरे मैडम बहुत

0: कुछ सीखा और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें हम लोग पहले बाहर के अस्पतालों में ढूंढते थे, विदेशों में ढूंढते थे, वो अगर आज आप किसी भी अच्छे अस्पताल में जाके देखेंगे हिंदुस्तान में, जो कि एक्रेडिटेड अस्पताल है, आपको वो दूसरे देशों से, क्योंकि मैं अभी अमेरिका भी रहकर आई, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, ऑल ऑफ सडन हम किसी ट्रिप पे गए थे,
1: अच्छा
0: नया अस्पताल बन रहा था तो हम लोग इक्विपमेंट वगैरह देखने गए थे, वहां उनको डेंगू हुआ, तो उनको एडमिट होना पड़ा। तो मैंने देखा कि भारत में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने पेशेंट के लिए और डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। रात में जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो देयर वॉज नो डॉक्टर इन हॉस्पिटल, जबकि मैं नाम नहीं लूंगी, अमेरिका का भी बेस्ट अस्पताल था और हमने उसमें भी बेस्ट कमरा लिया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी जो 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा से घिरे हुए हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो दैट इज वाई आई से कि हमारा हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन देश है और हमारे डॉक्टर सबसे बेहतरीन है
1: जी। और आप वहां रहकर आई और आप उसी फील्ड की हैं, तो आप जो सोच रही हैं या जो आपका जजमेंट है, मुझे लगता है वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसा कोई जाए तो हमें तो पता भी नहीं होगा कि क्या डिफरेंस है, बट यू कुड फील दैट डिफरेंस। और देखिए हमारे पास मैसेजेस बहुत आ गए हैं। जी आर पॉल और पूरा पॉल परिवार सौरभ नगर जलंधर से हमें सुन रहा है, लिख रहा है आज प्रोग्राम वेरी नाइस है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर उपासना और शालिनी मैम को नमस्कार। कैंसर में परिवार का क्या रोल होना चाहिए, आर्थिक पक्ष पर रोशनी डालें। नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। तो आज तो इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म और पर्यटन को जोड़ने के लिए उपचार और रिकवरी यानी स्वस्थ होने की प्रक्रिया को कैसे मिश्रित कर सकते हैं ताकि पर्यटन विभाग और हॉस्पिटल साथ मिलकर वेलनेस पैकेज बना सकें, ये जानना चाहे हमारे एक श्रोता ने।
0: देखिए इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं अभी आगे आपको यही बताने वाली थी कि अब इंडिया सिर्फ मॉडर्न साइंस को ऑफर नहीं कर रहा, हमारा यूएसपी है हॉलिस्टिक हीलिंग, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट मेडिसिन है, चाहे वो हमारी आयुर्वेदा है, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, चाहे योगा है, बहुत कुछ है हमारे पास
1: जी।
0: तो हम अब जैसे मैंने अपने नए अस्पताल में भी मैं आयुर्वेदा भी कर रही हूं ताकि हम जब भी किसी को बुलाएं तो हम ये कह सकें कि भाई बाकी जो हमारे और देश हैं जहां पे लोग इलाज कराने जाते हैं, टर्की वगैरह, वहां पे ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, कि भारतवर्ष आपको हॉलिस्टिक हीलिंग दे रहा है। और जैसे कि प्रश्न है कि हॉलिस्टिक हीलिंग हम कैसे करेंगे, तो प्रश्न उसका उत्तर ये है कि जैसे मान लीजिए एक लंबी सर्जरी होती है, रादर आज तो मैं एक अभी जहां पे एक मीटिंग से आ रही हूं वहां पे हमने स्पिरिचुअल ट्रेवल की भी बात करी है।
1: अच्छा,
0: सो हम हॉलिस्टिक हीलिंग में स्पिरिचुअलिटी भी डाल रहे हैं। जैसे अगर आप मेरे अस्पताल में आएंगे तो ओम बज रहा है बिकॉज इट हैज ए हीलिंग पावर। हम कोशिश करते हैं जैसे पेशेंट की सर्जरी हो गई उसको बाद हम उसको जब थोड़ा सा वो ठीक होता है, योगा करने लायक, प्राणायाम करने लायक, वो कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको जो बाद की प्रक्रिया है, जो सर्जरी तो देखिए आपने मॉडर्न साइंस से कर दी, उसके बाद उसकी हीलिंग के लिए हम ये सारी नुस्खे आजमाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट खुद को बेहतर महसूस करे,
1: रिकवरी या रिहैबिलिटेशन
0: जो एक होता है अंदर से खुद को वेल बीइंग फील करना, वो उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो एक तो ये हो गया इनके प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न इनका क्या था,
1: इन्होंने यही पूछा था।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देवदत्त पारसोलिया जी ने हमें लिखा है, नमस्कार टू डॉक्टर साहेब, ही इज लाइकिंग योर वॉइस, आपकी तारीफ कर रहे हैं आवाज की। और मुझे भी उन्होंने नमस्ते लिखा है, रिस्पेक्टेड टीम को लिखा है, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये लिखा है हमें प्रकाश चंद्र जी ने रोहिणी दिल्ली से कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बारे में अवेयरनेस हो, इसीलिए आज हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं और एक ऐसा एक्सपर्ट हमारे साथ है जो इस विषय पर संपूर्ण जानकारी रखता है। और मोहम्मद इब्राहिम ने हमें दोबारा लिखा है कि मैडम ये बताइए कि मेडिकल फैसिलिटीज आपकी जो चेन है या हॉस्पिटल्स में इंडिया में, वो कैसी फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है जिसके लिए लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं।
0: देखिए अभी भी अगर मैं अपना भी अगर मैं सिर्फ अपने अस्पताल का उदाहरण दूं तो भी मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे पास कम से कम 10-15 पेशेंट होंगे जो बाहर के हैं।
1: अच्छा,
0: जो दूसरे देशों से आए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या कुछ ताइवान से भी लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग देश हैं। लेकिन मैं कुछ बातें और भी आप लोगों को बताना चाहती हूं जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि जब एक विदेशी पेशेंट बाहर

0: पे आता है तो सिर्फ एक अस्पताल में ही नहीं जाता, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। टैक्सी चलती है क्योंकि हम लोग टैक्सी हायर करते हैं, हमने टाई अप्स कर लिए हैं कि भाई पेशेंट को लेकर आओ एयरपोर्ट से अस्पताल तक, तो एक वो काम हुआ। फिर पेशेंट के अटेंडेंट होटल में रुकते हैं, उनको काम मिलता है। फिर पेशेंट का अटेंडेंट सिर्फ अस्पताल में ही खाना नहीं खाता, वो बाहर भी जाता है, कुछ खाता भी है, कुछ खरीदता भी है। तो अगर आप देखें तो ये बहुत सारा रोजगार भी जनरेट हो रहा है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के साथ साथ। और हम लोग तो बहुत हाई एंड सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरी, कैंसर का बिगेस्ट सेंटर है हमारा यशोदा मेडिसिटी, जिसमें 4 रेडिएशन के लिनेक अंडर वन रूफ, जिसमें MR लिनेक विच इज टोटली न्यू। उसकी विशेषता यह है कि जिस समय डॉक्टर ट्यूमर देख रहा है वो उसी समय उसको ट्रीट भी कर देगा। तो वो देखने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और चूंकि वो MR है, CT नहीं है, तो रेडिएशन भी बहुत कम है। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारा प्रिसीजन ट्रीटमेंट भी करा है अपने कैंसर में, एग्जैक्ट ट्रैक लगा के, ताकि पेशेंट को जिस जगह जरूरत है उतनी जगह ही रेडिएशन मिले, रेडिएशन बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए। तो ऐसी चीजों के लिए लोग बाहर से भारत आते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक अपने सारे दर्शकों से निवेदन करती हूँ, अंग दान को बहुत बढ़ावा दें। कारण क्या है कि मैंने देखा साउथ इंडिया में बहुत सारा ट्रांसप्लांट हो पाता है,
1: जी,
0: जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा। क्योंकि लोग किसी भी, जैसे मैंने अपना सारा ऑर्गन डोनेट किया हुआ 15 साल पहले, मैं चाहती हूँ हम सब लोग शपथ लें, मेरे अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा है, लेकिन चूंकि कोई डोनेट नहीं करता तो नॉर्थ में डोनेशन नहीं हो पाता। और कभी भी कोई ये ना सोचे कि अगर विदेशियों को हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। सरकारी नियम बिल्कुल साफ साफ हैं, पहली प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट को मिलती है, दूसरी प्रेफरेंस उस स्टेट को मिलती है, तीसरी प्रेफरेंस भारतवर्ष को मिलती है, चौथी प्रेफरेंस में विदेशी नागरिक आते हैं। तो जो भी अंग निकलता है वो पहली प्रेफरेंस, जो भी नोटों में अपने आप को रजिस्टर करे हुए लोग हैं उनको ही मिलेगा।
1: जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। और हम भी समय समय पर कार्यक्रम करते रहे हैं, करते रहेंगे, नोटों पे, सोटों पे कि किस तरह से अंगदान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपने विशेष ये एक दलील की है तो हमारे श्रोताओं से रिक्वेस्ट की है, तो जरूर हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता माने इस बात को। और मैम इस चीज को फर्स्ट हैंड देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, तो हमारे पास मैसेजेस भी बहुत है। लेकिन एक मेरा प्रश्न था, क्योंकि मैं ये चाह रही हूं कि हमारी संपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाए जब तक आप यहां कार्यक्रम चल रहे, कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए लोग ज्यादातर आते हैं।
0: सबसे पहले नंबर पे लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे लोग आते हैं अपनी ट्रांसप्लांट्स के लिए, तीसरा न्यूरो सर्जरीज के लिए।
1: अच्छा,
0: न्यूरो का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की जिंदगी में। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, एक पेशेंट हमारे पास आया था, शायद कांगो साउथ अफ्रीका के किसी जगह से था वो। उसके सर पे इतना बड़ा ट्यूमर था, इतना बड़ा ट्यूमर था कि मतलब जैसे गोभी का फूल।
1: अच्छा,
0: उसको दिखाई नहीं देता था, उसे सुनाई भी नहीं देता था, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। फिर जब उसको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ और उसका पूरा हमने, हमारे डॉक्टर्स ने ट्यूमर निकाला, उसके घर वालों ने जब हमारे यहाँ रिकवर होके गया तो काफी इम्प्रूव था। घर वालों ने बाद में उसका वीडियो भेजा और एक थैंक्स नोट भेजा कि आज वो अपने आप चल फिर पा रहे हैं, वो देख पाते हैं, वो सुन पाते हैं, यानी एक नई जिंदगी। तो न्यूरो सर्जरी, चाहे वो आपकी स्पाइन की हो चाहे ब्रेन की हो, इसके लिए बहुत से देशों से लोग भारत आते हैं। भारत की विशेषता यह है कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप हमारे किसी भी अस्पताल में जाइए आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे केसेस कर चुके होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आजकल जो भारत के अस्पताल हैं, दे आर नॉट लेस देन एनी अमेरिकन हॉस्पिटल, रादर आई शुड से, आई कैन से दैट दे आर बेटर देन दैट
1: विद ऑल द फैसिलिटीज।
0: राइट नाउ आई एम हैविंग LN की टेबल, जो हमारी स्पाइन की होती है, ओ आर्म, जिसमें लगातार CT हो रहा होता है, देन वी हैव ब्रेन का अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों ने ले रखा है, नेविगेशन सिस्टम, देन देर इज ए स्पेशल मॉनिटर फॉर न्यूरो सर्जरीज, जो एक एक मिनट की अलग से मतलब आता ही डिफरेंट है। और ये सारी चीजें बड़ी महंगी भी होती हैं। तो हम लोग इतनी बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे। इसके साथ साथ लोग अपने नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऑर्थोपेडिक भी हमारे डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन करते हैं, यहां तक कि एल्बो रिप्लेसमेंट एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट, विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो वो भी इंडिया में होता है.

0: लोग उसके लिए आते हैं और कभी कभी जो मैं आजकल एक ट्रेंड देख रही हूँ रेस्पिरेटरी के लिए लोगों ने आना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान का रेस्पिरेटरी डॉक्टर बहुत अच्छा होता है
1: और कॉस्ट वाइज अगर हम उसको देखें
0: तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है अगर आप किसी भी स्पेशली मैं दो बातें बताना भूल गई आपको डेंटल के लिए तो मेरे पास ही कुछ लोग आते थे जो दुबई से फ्लाइट लेके हमारे अस्पताल आते थे और मैं एक दिन बाई चांस राउंड पे थी तो मैंने देखा एक लड़की अपनी 6 RCT करा रही है तो मैंने कहा एक साथ 6 क्यों करा रही बोली मेरी फ्लाइट है ना तो मैं करा के चली जाऊंगी तो डेंटल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजी के लिए लोग बहुत आने लगे हैं हेयर ट्रांसप्लांट नोज ठीक कराना लुक्स ठीक कराना या स्किन की और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए बिकॉज हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल हैं और हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड है
1: जी तो अभी हमने पॉजिटिव बात की मैं ये जानना चाहूंगी क्या कुछ चैलेंजेस भी आते हैं अगर हम मेडिकल टूरिज्म क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और आपने बताया अभी या तो इस सपोर्ट के बारे में भी मैं चाहूंगी हमारे पास समय थोड़ा कम है कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं ये जल्दी हमारे श्रोताओं को नियर फ्यूचर मिलेगा और कुछ चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं
0: चैलेंजेस ये आते हैं कि जब कभी कुछ लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं जैसे एक इंडिविजुअल ने किसी को भी कहीं भी ले गया किसी भी अस्पताल में जिस अस्पताल में सुविधाएं नहीं है या लोगों को पता नहीं है वो अननेसेसरी का आप ये समझिए कि अगर जो चीज 2000 में हो सकती है वो उसको 10,000 रुपए लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो चाहता है कि हमारी इमेज बाहर ना खराब हो उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जब कोई गलत आदमी इस काम में उतरता है दूसरा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो हम लोगों ने जब से उनसे ये कहा है कि हमें कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए मतलब फ्लाइट्स जहां से पेशेंट आ रहे हैं हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके दे दिया कि भाई इस कंट्री से लोग आते हैं वहां हमें ज्यादा कनेक्टिंग फ्लाइट दीजिए हमें वाया मत भेजिए कि अगर कोई पेशेंट का अपने देश से उड़े तो सीधे हमारे देश में उतरे दूसरा हम चाहते हैं उसके लिए ग्रीन चैनल बने सो दैट ही शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग अस्पतालों को यानी जिस अस्पताल के लिए वो आया है पेशेंट वहां से वो उसको फ्लाइट से ही ले ले और सीधे अपने हॉस्पिटल ले जाए यानी उनको सारी सुविधाएं मिले तो इन सब में गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है और साथ ही साथ हमने एक हेल्प डेस्क की मांग करी है जो ऑलरेडी पूरी हो गई है कि बड़े एयरपोर्ट्स पे हेल्प डेस्क हो कि जैसे अगर कोई बिना किसी जानकारी के ही आ गया हिंदुस्तान तो वो क्या करे उसने कहीं सुना कि हिंदुस्तान में बढ़िया इलाज है आप चलिए वहां आए तो उसको एक हेल्प डेस्क मिले जिसपे कोई बैठा हो जो उसको वो पोर्टल भी दिखा सके कि भाई ये अस्पताल है ये खर्चा है आप यहां जाइए तो सही जगह पे व्यक्ति पहुंचे और जो हमारे भारत इमेज भारत हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं अभी जो हर अस्पताल अपनी अपनी प्रशंसा करता है जाके अलग अलग देशों में हम चाहते हैं वो एक फैशन बंद हो और हम एक इमेज इंडिया या हम भारत कहना चाहते हैं कि इमेज भारत को मेंटेन करके दूसरे देशों तक पहुंचाएं तो जो चैलेंजेस थे धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं और हम लोगों ने फैसिलिटेटर्स को भी हम लोग एक्रेडिटेट कर रहे हैं ताकि जो लोग इस बिजनेस में हैं उनके लिए भी कुछ नियम कानून हो जिसको वो पालन करें ही करें तो ये है कुछ बातें
1: जी जिससे कि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो तो यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे एक प्यारा सा गीत सुनेंगे बहुत ही प्यारा गीत है मैडम को भी बहुत पसंद है तो ये गीत सुन लेते हैं लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी रहेगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारे फोन नंबर्स वही है हमारा व्हाट्सएप वही है इंतजार मत कीजिए फटाफट फोन करिए हम आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद

0: सोच रहा है कि आए इंडिया और इलाज कराए, तो व्हाट शुड बी द चेकलिस्ट, क्या क्या देखना चाहिए उसको?
1: देखिए, एक तो आजकल कुछ इंडियन जो हमारी बीमा भली कंपनियां होती हैं जो स्वास्थ्य बीमा करती हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस हो गया या ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, उनके भी टाई अप्स हो गए हैं विदेशी कंपनियों के साथ
0: जी।
1: तो अगर आप आउट ऑफ द पॉकेट नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो रिइंबर्समेंट हो वो आपके इंश्योरेंस से है, और आप मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप कजाकिस्तान में है, वहां की कोई एक बीमा कंपनी है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के किस अस्पताल में उसके साथ टाई अप है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि किस अस्पताल का आउटकम अच्छा है, जो कि एक पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं, या आपने जो वेबसाइट्स हैं हॉस्पिटल की आप वो चेक कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जहां आप आ रहे हैं क्या वहां पर आपकी भाषा का इंटरप्रेटर मौजूद है, ताकि आप सारी बातें सही तरीके से समझ सकें। क्या आप जिस इलाज के लिए आ रहे हैं वहां पे उस डॉक्टर का आउटकम क्या है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कितना खर्चा है आप वो भी देख सकते हैं
0: जी। तो बहुत सारी बातें आज हमें जानने को मिली। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आप ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में, और आज का हमारा विषय था मेडिकल टूरिज्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर मैम, यहाँ आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए
1: धन्यवाद।
0: और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर. बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था, जब कोई बात बिगड़ जाए. और बिल्कुल, जब कोई बात बिगड़ती है यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बात बिगड़ती है तो रेडियो डॉक्टर आ जाता है आपकी हेल्प के लिए. और प्रतिदिन आता है, जिससे हम रोज पूछते हैं आपसे, आप आज ठीक है ना, और आप हमें जवाब देते हैं फीडबैक के माध्यम से कि आप बिल्कुल ठीक है और हमारे कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं. तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें फीडबैक लिख सकते हैं. हमारा मेल आईडी भी आपको याद हो गया, healthairdelhi@gmail.com. और बहुत शीघ्र आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन पाएंगे. हमारा यूट्यूब का जो चैनल का आईडी है वो है आकाशवाणी AIR. तो इंतजार करिए. पर आज का इंतजार तो अभी बाकी है ना, दो तीन मिनट का, तो क्यों ना हम उसका भी फुल यूटिलाइजेशन कर ले. मैम ये बताइए चलने से पहले कि अगर कोई मेडिकल टूरिज्म में आना

अंजलि हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बनके तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे।